0: भैया जी बताओ ना, आप हो कौन?
1: मैं वो था जिसकी तबाही की गवाही अखबार का पन्ना पन्ना देता था। फिर एक दिन